0: सूचना सूचना सूचना
1: दोलखा जिल्ला भीमेश्वर नगरपालिका नगर लामा संघ को आयोजना में कौन

असई सृष्टि का पहले मही थिए भगत कोई थिए नन्नरु जो देख अहिले सबै बुझ तिमी मेरै विभूतिहरु सृष्टि का पछि फेर महा परलायमा मुइ ग्रान्छु भगत।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचार को सहयात्री।

0: रेडियो सैलून सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ट्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलून समाचार को सहयात्री।

नमस्कार रेडियो सैलों सामुदायिक एफएम बैनी थोपलो सात मेगाहर्ज बाट म बद्री प्रसाद सापकोट आज विक्रम संवत 2083 साल श्रावण शुक्ल पक्ष सन 2026 अगस्त 26 तारीख भाद्र 10 गते बुधवार त्रयोदशी 4 घड़ी 8 पलम मात्र अब स्तुति करौं आयु द्रोण कुमार कैसरी हो सक्षण कल्पय भरी